मेरे जीवड़िया परदेसिया कि पवे जंगले राम कि तू पवे जंगले राम सच सहम मन वसे कि पासे जंगले राम बोले सेख परी प्यारे अल्लू लगे

चेतन वसीखा तुम्हें मारी गोर करे चेतन वसीखा निमाणी गौर करे अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजणिया अजमला शेख फरीदा तत्म कुंजणिया मनो मचंदणिया जे जाना मर जाइए कुम न आइए झूठी।

गगा गोगन कुंद्रवो सास सास जपनीत काम सासा देता बिल मना करियो मीत।

चलने चलना हार बिचारा ले मनो चले चलना हार बिचारा ले मनो गंढे दिया छे मार तोड़े दिया किठी नो जिमें

लाश करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सूझे कह कबीर सूरे प्राणी कैद कबीर सुनो रे प्राणी।

जासिन रंग तरंग करीब मस्त रंग तरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावी से खुसाए खां सबे उठ जासी।

शायर ने बड़ी सुंदर बात आखी है। ओ आंदे ने सरे जलसा गोविंद ने तकरीर फरमाई, ये वो एक तकरीर थी जिसमें इनकलाबों की थी अंगड़ाई। गुरुजी ने कहा है दे गुलामी रह नहीं सकता, मुजालम के थपेड़े ये वतन अब सह नहीं सकता। यहाँ है जात के झगड़े, यहाँ मजहब के झगड़े हैं, ये सब मतलब की बातें हैं, ये सब मतलब के झगड़े हैं। ब्राह्मण को गरूरे कौम ने इतना डुबोया है कि मैं वड्डा वा, उसकी जनीयत पे उसका मुकद्दर रोया है। हुकूमत के तशद्दुद का जमाना खत्म करना है, हकीकत कह रही है ये अफसाना खत्म करना है। उठो शहादत के लिए।

फिर हिम्मत आई, फिर डिसिप्लिन आया, फिर साहबी आई, अमृत दी दात बख्शी गरीब नवाज पातशाह ने, ते फिर भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, गुरु कृपा ने जातां दा मौका दित्तियां। ध्यान दिओ जे, ध्यान दिओ जे, एक जट लिया, एक खत्री लिया, एक चीवर लिया, एक चींबा लिया, एक नाई लिया, ते सारयां नूं इक्को बाटे विच पलाया।

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा कर कर बाबा गावी है वज्जल ताल मृदंग बाबा

तेरे माधव जी। सत्संगत मिले सो तरिया, सत्संगत मिले सो तरिया, साध संगत हुए निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फांस। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, मेरे माधव जी सत्संग।

या संगत विच जेड़ा आ जांदा है उतर जांदा है, जेड़ा संगत करदा है उसका पार उतारा हो जांदा है। संगत आप भी संगत कर रहे, संगत कई प्रकार दी, पर जेड़ी संगत आप कर रहे हो साहबा ने इस नूं साध संगत करके आखे, उत्तम करके के श्रेष्ठ पावन पवित्र करके के कि संगत साध संगत भाव सत दे नाल जुड़ना साध संगत, जिथे सत एक अकाल पुरख की आराधना हो रही होवे उस नूं आखदे ने साध संगत। संगत किनू कहिंदे ने?

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत।
0: साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी,

अब मुहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पावन शब्द सरवण कीता है। आओ एक जो के ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस साहब जी की बहुत ही सुंदर रचना जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन कीती है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वह रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, ते बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश की बनावट आओ अड़ाना बहार की बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ये आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असा ने गाई है, तो ध्यान देना इहदी रचना पहला आप श्रवण करो। बोल जो बड़े औखे ने धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंपयो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इसनू उन्होंने कंपोजिशन बनया है, ध्यान देना। इस चीज नू इन्नी औखी पढ़न विच औखी है, पर इसनू उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज है, ध्यान सरवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंपयो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंपयो तरणी तर, कंपयो तरणी तर, धरती कंब गई, कंपयो तरणी तर, थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत में तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर विच जय जयकार हो रही है, सारे पासे धुम पै गई, इंद्र दा दरबार ते वड्डे वड्डे भीम जिहड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की शिफत तो स्नान देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। तो अगला पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह दे किस तरह चलते ने, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के, तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघुवीर महावीर रण तीर की, गिरत पगरी धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चकर चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर महा जोध दुष्ट दमन करे। चक्कर नियांग सिंह धमाले ते चक्कर पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों उह आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपक तबर महा जुद्ध दुष्ट दमन करे, गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या दे पुरिया हैरान हो गई, तो डरन लग पिया आनंदपुरी देख के। तो आओ ये रचना बड़े आनंद के नाल प्यार के नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस साहब जी की रचना।

तद्र दाने दाने तुम दाने तद्र तुम धरना। ये तराना साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का है जो पातशाह जी ने उच्चारण किया।

गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे, बड़े आवदो जाहदो पारसा थे, गनी थे नबी थे, बड़े मुकदा थे गाजी थे, दलावर थे वो खैरे शफा थे, करवाने की मर्ज की वो आले दवा थे, देखने के गुरु गोविंद सिंह थे लेकिन जाहरे खुदा थे। तन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जाहरे खुदा, ना सरो मनसूर गुरु गोबिंद सिंह, एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह, हक रा गंजूर गुरु गोबिंद सिंह। तन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दे विच सारे गुण सन। विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, नैण तो नशीले, सतगुरु पातशाह जी दे नैण तो नशीले, मसतीले दो जादू परे, नैण तो नशीले मसतीले दो जादू परे, तनक निहार सब सुरत पलात है, तनक मात्र तनक निहार सब सुरत पलात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, पलकन के तीर करे दैंतन फकीर शाह, रंकन पे दया कर तख्त बिठात है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, एक हाथ माला और दूसरे पे तेग शुभ है, भक्ति और वीरता की गर्दन चुकात है, फतेह चाड़े आंगन और लक्ष्मी दबाए पग, गोबिंद मरगिंद गुर जीते नहीं जात है। धन गुरु गोबिंद साहब मरगिंद की तरह शेर की तरह सतगुरु पातशाह जी कभी भी रण मैदान में हारे नहीं है, सतगुरु पातशाह हमेशा जित हुए। तो सत संगत जी, औरंगजेब का ऐलान होया कि मेरे कन्ना विच इन्हां सिखां दी ढोलकी ते चिमटे की आवाज, ते ये जिहड़े सत श्री अकाल दे जकारे छड़दे ने, इन्हां नूं जरा चेतावनी कर दिओ, अपने सिपाहियां नूं कह दिता कि दस दिओ कि मेरे कन्ना विच ये ढोलकी चिमटे की आवाज ना पवे, मेरे कन्ना विच ये जिहड़े जकारे छड़दे ने सत श्री अकाल दे, इन्हां दी आवाज ना पवे। तो कुछ मसंदा ने आके सतगुरु पातशाह चरणा ते बेनती की, महाराज बड़ी डर वाली गल है, बड़ा एक अनोखा चैलेंज औरंगजेब का होया है, सतगुर आपां लड़ाई झगड़े विचों की लैना है, ते कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, आप जी नूं असीं मशवरा देंदे हां। सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे सतगुरु पातशाह जी, ध्यान देना, सारे कट्ठे होके मशवरा देण लगे, कहिंदे सतगुरु पातशाह जी गरीब नवाज जी ये कृपा करो कि आपां एक भोरा पुट लईए, उस भोरे विच बैठ के आपां आस्ता आस्ता हौली हौली पाठ करा करांगे, आस्ता आस्ता बाणी पढ़ लिया करांगे, ते हौली हौली ढोलकी बजाया करांगे, ते उत्थे जकारे छड़ लिया करांगे भोरे विच ही बैठ के, ते आपां की लैणा है लड़ाई झगड़े चो। ते सतगुरु पातशाह जी हस पे, कहिंदे ने तुसां ते ए मन विच ठान लई है, मन विच विचार कर लई है, पर सतगुरु पातशाह कहिंदे मेरे मन विच जो फुरना है वह भी जरा शरवण करो। सतगुरु पातशाह कहिंदे उन्हें यह ऐलान कर दिता है कि मेरे कन्ना विच ढोलकी की आवाज ना पवे, नगारा मर दो। सतगुरु पातशाह कहिंदे नगारे ते चोट मारो, नगारे ते चोटा वजन, ते सिंह चढ़दी कला विच जकारे छड्डन। ते सतगुरु पातशाह कहिंदे तुसीं भोरे की गल करदे हो, असीं कहिंदे हां खालसे का जिहड़ा निशान है उच्ची पहाड़ी ते चुल्ले, दूरों दूरों पता लगे कि आनंदपुर साहब का यह लोहगढ़ का किला है, यह आनंदपुर साहब की पावन धरती है, गुरु कलगीधर पातशाह विराजमान हैं। तो सत संगत जी सतगुरु पातशाह कहिंदे गुरसिखो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे आ बोल नगारे ते वजने चाहिए ने, ये जिहड़े बोल है धमाकेदार जोरदार वजनदार शक्तिशाली, ये जदों वजणगे नगारे ते देखो फिर उहदे कन्नां विच जदों गूंजा पैणगे तां पता लगेगा। तो सत श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी इन्ने अणख, सतगुरु पातशाह जी इन्नी जुरत, इन्नी शक्तिशाली वीरता दे पुंज सतगुरु पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह जी तो उच्चारण कर रहे तराना सत्यान देना। दागड़ दी धर्म दिगतांग दागड़ दी धिम धरना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, दागड़ दी दे दे ताल कागड़ दी कुम करना, बागड़ दी बरिकते बांग तागड़ दी तोम तोम तरना, तदर दानी दानी तुम दानी तदर तुम धिरना। अखीर ते सतगुरु पातशाह कहिंदे धीम ते धरना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵੀਣਾ ਤੇ ਸਤਾਰ ਦੇ ਬੋਲ।

मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र शब्द।

कट कट रव रहा बनवारी। कहंदे ने दुनिया दे मुसलमान काबे दी ज़ियारत करन तुरे जा रहे सन, ओदां दे कपड़े पहने हुए। कबीर जी कहंदे ने मैं भी तुर पिया भई शायद परमात्मा रब उत्थे मिल जावे। कबीर हज काबे हों जाए था, कहंदे ने अगे मैनू खुदा मिल पिया ते खुदा ने मेरे नाल झगड़ा कीता। कहन लगे कबीर किथे चले हैं? मैं क्या मालिक मैं तां तैनू मिलन चलिया। तां कहंदे ने नाराज हो गए मेरे नाल झगड़ा कीता भई लोगां दी तां मत मारी गई है तेरी भी।

ब्रह्मा इहदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्मपाती बिस्नडारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोलेनाथ शंकर

अरदास करो एक ओ वल रब जिस दे होवे वल सो कदे ना जम गुरु होए वल लख पाए क्या की आज तू वल नहीं ते फिर कुछ भी नहीं। कले मां सिंह नाल ही वापरी जड़ी घर का नक्शा एक मिनट सुनिया जे ये चालिया नाल ही वापरिया। कहिंदे अगले दिन गुरुद्वारे चाली दे चाली कट्ठे होए ते हर कोई अपनी गल दस रहा कि मेरे परिवार ने मेरे नाल की कीती सारिआं नूं महसूस हो रहा। कहिंदे जदों गुरुद्वारे कट्ठे होए ते साध संगत उस वेले कथा भी इहो चल रही सी कि छे तरह की हत्या है जान दी। ये कुदरती गल है तकरीबन अंदर की गल का जवाब संगत जो मिल जाता कि चाली दे चाली गुरुद्वारे कट्ठे होए ते साध संगत जी उस वेले कहिंदे जिहड़े भाई साहब कथा कर रहे सी गुरुद्वारे ओह प्रसंग भी इहो चल रहा है कि पाप ते कई तरह दे ने ते छे तरह की हत्या है। पापी बहु प्रकार के उत्तम मध्यम ज्ञान हत्या छे प्रकार दी मन में लियो पछाण। वो छे प्रकार दी हत्या शास्त्रां च लिखी है गऊं ब्राह्मण मारीए गोत्री हथ कराए ऋण हत्या कन्या हत्या विश्वास घात अधकाए ध्यान दे अच्छे हत्या ने गऊं ब्राह्मण मारीए गऊं नूं मारना भी हत्या गिणीए ते जेड़ा सही सच्चा सच्चा ब्राह्मण प्यो उन्हों भी मारना हत्या गिणी गोत्री हथ कराए। गोत्री कहिंदे अपनी कुल चों किसे दा घात करना वो भी हत्या। अगे चौथी हत्या लिखी है ऋण हत्या। ऋण हत्या होंदी है भी किसे दा कर्जा चुक के ते फिर कोशिश करनी भी ये वापस ना करिए उदा किसे तरीके बुरा हो जाए ऋण हत्या। कन्या हत्या लड़की नूं मारना पहले 96 करोड़ पाप ते एक हत्या बराबर है ते फिर की आखिया आ जड़ी गलती भाई मान सिंह को हुई ते दूजियां कोलो हुई वो केड़ी हत्या इहदे च आई नहीं। कहिंदे उस वेले कथा हो रही सी कि आ छे हत्या ने ते एक हत्या 96 करोड़ पाप वर्गी है ते फिर अगां की चलिया प्रकरण कोट 96 पाप सम हत्या एक कहाए 96 करोड़ कोट 96 पाप सम हत्या एक कराए। कहिंदे खट हत्या के तुल खट कहिंदे 6 नूं खट हत्या के तुल कहिंदे 6 हत्या दे तुल एक हत्या बराबर है जे गुरु तो सिख फिर जाए। आखो सतनाम खट हत्या के तुल जो गुरु ते सिख फिर जाए। आ गुरु ग्रंथ साहब की पंक्ति जरा पढ़ लो एक मिनट

सलाह करदे पए ने करिए की ते माई भागो आ गए ते कहंदे उदास क्यों आ गलती कर बैठे हां हुण सोचदे आ बख्शी किवें जाए। माता भागो कहंदी हुण ते बख्शी जाएगी सिर दे के अज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु।

इस पावन पवित्र शब्द अंदर साहब श्री गुरु नानक पातशाह मन नूं संबोधन करदे होए सानूं कलयुगी जीवां नूं उपदेश देंदे ने। एक चेतावनी एक चेतना देंदे ने, हे पुल्ले मनुख, जिस दी चेतना जिस दी आराधना करन वास्ते तेनू संसार विच भेजे है तो उसनू क्यों भुला दिता है। पर अज दा मनुख ए गल मनन नू तैयार नहीं कि मैनू कुछ भुल गया है। कहिंदा है मैनू सब कुछ चेते है, मैनू सब कुछ याद है। साहब कहिंदे ने नहीं, एक गल तू भुल गया है, मैं तेनू चेता कराना चाहना। मन एक ना चेतस मूड मना, मूड कहिंदे ने मुगद मूर्ख मन नू। हे मूर्ख मन, तू एक परमात्मा नू चेतदा नहीं, ओदी आराधना नहीं करदा। याद रखी, मन एक ना चेतस मूड मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। जे तू हरि वाहिगुरु नू विसार देवेंगा तेरे अंदर दे गुण एक एक करके सारे गल जानगे, सारे सड़ जानगे, मुक जानगे। इसलिए तू परमात्मा नू चेते करया कर।

आप श्रवण कर रहे सो कि धन गुरु नानक पातशाह नु जिस वेले पांधे ने पढ़ाया गुरु नानक ने पढ़िया लेखा समझाया पर गुरु नानक ने जिस लेखे दी गल कीती हुण पंधा हैरान हो गया कहन लगा पातशाह मैं ते सवाए पौण डेढ जा जमीन जा लकड़ दे साब लेखे नू केवल जानना इस तो सवा मैनू होर लेखा कोई नहीं आउंदा बाबा जी कहन लगे पंडित जी ए लेखा इत्थे ही रह जाना है मैं उस लेखे दी गल करना जेड़ा लेखा साडे नाल जाना है बाबा ए लेखा लिख जान ओ लेखा लिख जिड़ा तेरे नाल जाना है फिर कहिंदे ने इत्थे पांधा जी ने गुरु नानक नू पूर्ण शक्ति मन के कुछ सवाल कीते कहन लगे बाबा जी हुण ए दसो कि मौत ज्ञानी दी भी हुंदी है ते मौत अज्ञानी दी भी हुंदी है दोनों मरदे ने सतगुर कहन लगे पंडित जी इस गल दी विचार ना करो मौत वाकई ही दोनों दी हुंदी है लेकिन अज्ञानी दी मौत ऐसी है जिदी मौत दे अंदर शौक चिंता वाशनामा ते कुकर्म लैके मरदा है ते ज्ञानी जिसनू जम दा डर नहीं हुंदा परमात्मा नू अंग संग जानदा है ओदे रंग विच सदा खुश रहिंदा है ते जिस वेले ओ मरदा है ओनू दरगाह विच मान ते वड़ियाई हासिल हुंदी है पातशाह ज्ञानी ते अज्ञानी विच अंतर की है कहिंदे ने अज्ञानी जो परमात्मा नू भुल जांदा है परमात्मा दा चेतन नहीं करदा ते ज्ञानी जिहड़ा परमात्मा नू याद रखदा है परमात्मा नू हर दम

जो ब्रह्म दी विचार करता है, जो परमात्मा नु भुलदा नहीं बल्कि परमात्मा नु चेते रखदा है, आप भी चेते करदा है ते होरनां नु भी चेते करांदा है, भुले भटकियां नु परमात्मा नाल जोड़दा है, ओनू कहिंदे ने ज्ञानी। पांदा ए गल्लां सुन के गुरु नानक दे चरणां ते मत्था टेक के बारंबार अपनी भुलां बख्शाण लगा, नानक जी मैनू बख्श दियो, मैं अनजाने विच हो सकदा है तानु वाद काट कह गया हां, इसलिए मेरी भुल बख्श दियो। जिस वेले कहिंदे ने महता कालू जी नानक जी नू लैण आए ते कालू जी कहन लगे, पांदा जी मेरे पुत्र नू बड़े प्यार नाल पढ़ाना, जितनी जल्दी ए पढ़ाई पूर्ण करेगा मैं उतनी वड तुहाडी सेवा करांगा। हुण पांदा हथ बन के खड़ा हो गया ते कहन लगा, कालू जी इस अपने पुत्र नू पुत्र ना जानो, ए ते कोई परमेश्वर है। पांदे ने ए हथ बन के बेनती कीती ते कहन लगे, महाराज इन्हां नू ते ओ पढ़ाए जेड़ा इन्हां नालों वध पढ़िया होवे। कहन लगे, मेरी निगाह दे विच इस संसार विच इन्हां नू पढ़ाण वाला कोई नहीं है, ए ते संसार नू पढ़ाण विच आप समर्थ हन। कालू जी ए साडे कोल पढ़न नहीं आए बल्कि सानू पढ़ाण आए ने, ए ते आप बहुत विद्वान हन। ए गल्ला सुन के कालू जी बड़े प्रसन्न चित होए ते खुशी नाल नानक जी दी उंगल फड़ के अज घर नू तुर पै ते सतगुरु गुरु नानक पातशाह साडे लिए उपदेश की करदे ने। आओ एक मर्तबा सारे आखो।

इस मूर्ख मन नु गुरु नानक पातशाह ने बारंबार समझाया, बारंबार उपदेश दिता है। ते उपदेश देंदे होए सतगुरु जी ए सानू गल समझांदे ने। सो साध संगत आओ, जे किते मन समझदा है

अवर पंच हम एक जना। हे परमात्मा ओ पंज मैं कल्ला, मन दी गल पैसो कि घरां विच चोरियां बहुत होण लग पईआं ने। क्यों हुंदीआं ने? क्योंकि जदों घर दा मालक ही अवेसला हो जाए, जदों घर दा मालक ही सौ जाए, चोरी ते आपे होनी। जदों घर दा मालक जागण लग पवे फिर चोरी नहीं हुंदी। साहिब कहिंदे ने आ वी घर है, तन इक घर है, ते घर दे अंदर वेखो ये चोर बाहरों नहीं जी आउंदे, ये चोर अंदरों ही तैयार हो जांदे। ते चोर भी एक नहीं पंज ने, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, पंज चोर नितां प्रति मारदे ने, लुटदे ने, मारे लुटे नीत नीत किस आगे करी पुकार जना। मैं पुकार किदे अगे करा? श्री राम नाम उचरमण, हे मेरे मन तो राम दा नाम उचारण कर। आगे जम दल बिखम कणा, अगे दा रस्ता बड़ा औखाई, जे उस रस्ते चलना है ते परमात्मा नु चेते कर, परमात्मा नु याद कर। परमात्मा नु याद रखेगा तां किते जाके तेरी परमात्मा दे नाल बन आवेगी। सो ए बारंबार सतगुरु पातशाह सानू समझ

वनस्पतमौलि चरिया बधल हे मन मोलिया कुम थो मुगद मना पाओ मेरे मना इस मन मौलिया मन पया रंग अमृत फल पाया हे कोई भव याद बधारे हुकम बुझे हुकम बुझे कैलन को न कैलन कोई Yeah, man.